0: की आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio,
5: 1413 AM and online.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड 3

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford, Severn, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्स अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

اشهد ان لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 81 83 व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 012
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

0: तमगाएं इम्तियाज मिलने पर एले ब्रैडफोर्ड बर्तानिया और ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो के डायरेक्टर सैयद हसन और रेडियो की सारी टीम की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से दिली मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं। और उज नसीब हो जमाने में तुझको ऐसा कि आसमां भी तेरी रिफतों पे नाज करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
1: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
0: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे
1: बालियां अंगूठियां और हार,
0: जो दुल्हन करे सिंगार,
1: आज ही मामू काके की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान।
1: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन,
1: क्वालिटी की पहचान।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रैडफोर्ड, BD95BR, 01274491442।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
1: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
0: अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
0: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
0: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
0: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
11: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट्स से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: ना ताज़ा सब्जियाँ और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी। बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
1: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
0: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
1: बालियां, अंगूठियां और हार,
0: जो दुल्हन करे सिंगार,
1: आज ही मामू काके की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन,
1: क्वालिटी की पहचान।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
1: सोफी ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
3: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
4: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
3: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
10: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
12: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
13: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
12: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
13: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
12: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
12: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: यू आर लिसनिंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
7: 1413 AM एंड ऑनलाइन।
8: यू आर लिसनिंग टू
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Comfort Lane, Bradford, PD95ER 01274-491-442,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
1: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
4: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
10: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्स अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
11: बेखबर तू जौहरे आईनाए अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम।

0: 2740560014 सोफी ज्वेलर्स,
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
11: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 4283 49, other branch, the Mughal Emporium, 1304 Leeds Road, Bradford 3.

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: helping you secure your future.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता? ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
2: मैनिंगम सुपर स्टोर,
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is... Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
6: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
8: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
9: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
10: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
9: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
10: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
9: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
10: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
9: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford, Severn, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment?
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी। अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is... Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274-306677.
6: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
6: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
8: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
9: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
10: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
9: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
10: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
9: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
10: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 13।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: यू आर लिसनिंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
7: 1413 AM एंड ऑनलाइन। You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड 3

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
11: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: यू आर लिसनिंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
8: 1413 AM एंड ऑनलाइन।
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
11: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड 3

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides...

अस्सलाम वालेकुम सामिन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ ये नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ ये नशात आप डेब पे भी सुनते हैं। जी हाँ, डेब प्लस पे आप हमें BFD एशियन रेडियो के नाम से ब्रेडफोर्ड और इसके आउटस्कर्ट्स में सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, जितनी भी गाड़ियां तकरीबन 2017-18 के बाद आई हैं उन सभी में डेब प्लस की सहूलत मौजूद है। शायद उससे पहले वाली गाड़ियों में आपको ये रेडियो सुनने को ना मिले, लेकिन वहां पे आप हमें AM पे सर्च कर सकते हैं और नई गाड़ियों में आप हमें डेब पे सर्च कर सकते हैं। वॉइस क्वालिटी का ज़ाहिर फ़र्क होता है, डेब की क्वालिटी थोड़ी बेहतर होती है और जो AM की क्वालिटी है वो हालांकि फ्रीक्वेंसी खासी लॉन्ग रेंज होती है, लेकिन साउंड क्वालिटी शायद FM जितनी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी सुनने के काबिल होती है। हम तो इंजॉय करते थे, असल तो रेडियो ही AM होता था। ये चीज़ें तो आजकल यूँ कह लीजिए कि टेम्परेरी हैं। जो असल फ्रीक्वेंसी थी जब रेडियो की शुरुआत हुई थी तो वो सारी AM और मीडियम वेव और लॉन्ग वेव फ्रीक्वेंसी थी, और शॉर्ट वेव तो वो फ्रीक्वेंसी थी कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आपको सुना जा सकता था। लेकिन फिर हालात बदले, तकाजे बदले, पर बात तवील होती जा रही है। आपको बताते चलें कि अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमारा स्मार्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो चाहे आप एंड्रॉयड, दोनों पर हमारे ऐप्स भी मौजूद हैं। और सामीन, अब प्रोग्राम रंगे महफिल ये आपके मेज़बान सैयद हसन नाज़र हैं और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खलुस पर आदाब पेश करते हैं, तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप इस वक्त जहां कहीं भी हमारी ये आवाज़ सुन रहे होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से आप सभी बखैर वाफियत होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को सेहत व सलामती दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अगर आज तबीयत कुछ अच्छी नहीं है तो हमारी बहुत सी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको सेहत व सलामती दे, आमीन। और सामीन, हमारी इस वक्त की नशात आप लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर और CV FM मिल्सब्रा से 104.5 FM के जरिए भी समाप्त फरमा सकते हैं। और अगर आज के इस प्रोग्राम में आप शिरकत फरमाना चाहें तो आप कॉल भी कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं, बड़े बड़े बच्चे बच्चे मर्द व ख़वातीन सभी जानते हैं कि स्टूडियो का नंबर है 01274306677, 01274 एरिया कोड है, और स्टूडियो का नंबर है 3066 70 306677। और अगर आप व्हाट्सएप के जरिए भी इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें तो भी वेलकम, खुश आमदेद। व्हाट्सएप के लिए हमारा कंट्री कोड है 00447 800 599 563, दैट्स 00447 800 599 563। आइएगा और अपनी फरमाइशें पहुंचाइएगा ताकि आपसे बातचीत करके आपकी फरमाइशें इस प्रोग्राम का हिस्सा बना के हमेशा दिली खुशी होती है और आपसे बातचीत का एक बहाना बन जाता है।

सभी ने आइए आज का पहला गीत आप सभी सुनने वालों के नाम करते हैं जो कि हमारी नशियात के रेगुलर कॉलर्स हैं, रेगुलर समात फरमाते हैं। जी चाहता है छेड़ के हूँ उनसे हम कलाम, जी चाहता है छेड़ के हूँ उनसे हम कलाम, कुछ तो लगेगी देर सवालों जवाब में। जी चाहता है छेड़ के हूँ उनसे हम कलाम, कुछ तो लगेगी देर सवालों जवाब में।

जी सामीन, खूबसूरत गीत आप सुनने वाले सुन रहे थे। राह में उनसे मुलाकात होगी, जिससे डरते थे वही बात होगी। कहते ना कि हमारी राह में गहरा अना का खड भी था, हमारी राह में गहरा अना का खड भी था, उसी में गिरने का डर था हमें, उसी में गिरे। शायरी थी जमीर काजमी की, मौसीकी थी अनु मलिक की, आवाज़ थी कुमार सानू और अलका याग्निक की, खूबसूरत गीत था आप खूबसूरत सुनने वालों के नाम। और जहाँ तक सामीन मुलाकात का ताल्लुक है, मुलाकात की कहानी है, तो मुलाकात की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एक वो मुलाकात होती है जो आपकी सरेराह हो जाती है और उसमें आप कुछ भी आप प्लान्ड नहीं कह सकते, आपने कुछ सोचा समझा नहीं होता, और वही सच्ची मुलाकात होती है और वही अच्छी मुलाकात होती है और वो बिल्कुल नेचुरल होती है, कुदरती होती है, उसमें कुछ तसन्नो बनावट बिल्कुल नहीं होती। लेकिन जो ऑर्गेनाइज करके मुलाकात की जाती है उसमें अक्सर बनावट होती है, मिलावट होती है, रख रखाव होता है, और उसमें वो जेन्युइननेस नहीं होती जो कि सरेराह मुलाकात में होती है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि मुलाकात ही वही होती है जो राह में चलते चलते हो, क्योंकि वो मुलाकात ही क्या कि जिसका हर तरह से आपने एहतमाम कर रखा है, आपने सोच रखा है कि वो ये कहेगा तो हम ये कहेंगे, वो ये कहेगा तो हम ये कहेंगे, उसमें तो सारे का सारा एक ड्रामाबाजी हो जाएगी। और प्लान्ड जिस तरह आजकल पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं, सारी की सारी सिचुएशन पहले से तय, और सिर्फ और सिर्फ सरकारी जो फंड्स हैं अरबों खरबों में वो ज़ाया किए जाते हैं, हालांकि पहले से तय होता है कि अब इस बार हमने क्या खेल क्या खेलना है। बिल्कुल वही है जो प्लान्ड मुलाकात होती है। इसलिए मेरा ज़्यादा मानना है कि जो राह में मुलाकात हो वो ज़्यादा अच्छी होती है, ना कि जो आप कहीं पे तय करके मुलाकात करते हैं उससे। और जी चाहता है इसी हवाले से एक और गीत सुन लें, क्या ख्याल है? चलते चलते और राह में मुलाकात के हवाले से जो अगला गीत जहन में आ रहा है वो ज़रा बताइएगा कौन सा गीत हो सकता है। चलिए आपको क्या पहली बजवाना, आपको गीत ही सुना देते हैं हम।

0: चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। सामीन शायरी थी जनाब कैफी आजमी की, मौसीकी थी गुलाम मोहम्मद की, आवाज थी लता की, फिल्म का नाम था पाकीज़ा। उम्मीद करता हूँ कि गीत आप सभी सुनने वालों को पसंद आया होगा। अजी क्या ही कहते हैं कि अपने जमाने की यादगार फिल्म थी पाकीज़ा, और इसके कमोबेश सभी के सभी गीत हिट हैं। और जो आज का हमारा उन्वान था उसके एतबार से बहुत ही खूब गीत था। जो मुलाकात होती है वो सरेराह अच्छी होती है, या फिर जो तय करके मुलाकात की जाती है वो बेहतर होती है। तो उस एतबार से हम समझते हैं कि जो सरेराह होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि उसमें बिल्कुल आप बेतकल्लुफ होते हैं, कोई उसमें बनावट तसन्नो नहीं होता। जबकि जो तयशुदा मुलाकात होती है उसमें बहानाबाजियाँ सब कुछ उसमें शामिल होता है। तो आप भी ये ज़ारे ख्याल कर सकते हैं, जब आप लाइव कॉल्स में आएंगे तो ज़रूर बताइएगा मुलाकात के हवाले से आपके क्या विचार हैं, क्या ख्याल आते हैं, क्या सोच विचार है आपकी। और सामीन अब थोड़ी देर में हम चलते हैं ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद आपके लिए फिर हाजिर हो जाएंगे। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677 ब्रेडफोर्ड, एरिया कोड है 01274, स्टूडियो का नंबर है 306677, व्हाट्सएप है 00447 800 599 563 00447 800 599 563। आइए चलते हैं ब्रेक पे।
1: You're listening to Bradford Asian Radio
2: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677. It's the ideal to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.

0: सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई
1: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
0: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
1: बालियां अंगूठियां और हार
0: जो दुल्हन करे सिंगार
1: आज ही मामू काकी की दुकान
0: खालिस सोने की पहचान
1: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
1: आपकी शान
0: हमारी आन
1: क्वालिटी की पहचान
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95BR01274491442
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
1: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
3: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
4: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

और सामीन अभी आप मलका इत्रनम नूरजा की आवाज में गीत सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि गीत आप सुनने वालों को पसंद आया होगा। और अब एक और गीत है, शायरी है समीर की, मौसीकी है हमेश रश्मिया की, आवाज उदित नारायण अलका याग्निक। सिलसिले मुलाकातों के ना तोड़िएगा। कहते ना कि कभी कभी के यार आने भले मालूम होते हैं, मुलाकातें मुसलसल हों तो दिलचस्पी नहीं रहती।

तोड़ गया रिश्ते तो सारे ही वो जाते जाते, तोड़ गया रिश्ते तो सारे ही वो जाते जाते, वरना इतने तो मरासम थे कि आते जाते। और सामीन, खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आप सुनने वालों को पसंद आ रहा होगा। एक दो गीत और होंगे ब्रेक से पहले, और उसके बाद चलेंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद आप सुनने वालों का वक्त होगा जिसमें आप तशरीफ लाएंगे, कॉल्स करेंगे और आपसे बातें होंगी, आपकी शायरी होगी। और आइए अब आपको एक और खूबसूरत गीत सुनाते हैं मुलाकात के हवाले से।

गीत खूबसूरत है, लेकिन आप जानते हैं कि जो उर्दू और हिंदी का फ़र्क होता है वो बड़ा ही बेमिसाल फ़र्क होता है। हम उर्दू में लिखते हैं कि किसी रोज़ तुमसे मुलाकात होगी, लेकिन हिंदी में अक्सर लिखा होता है कि किसी रोज़ तुमसे मुलाकात होगी। चलिए, ये लफ्ज़ रोज़ है या रोज़ है, आप पिछोड़ते हैं और आपको सुनाते हैं ये खूबसूरत गीत। और सामिन, इस गीत के बाद हम चलेंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद आप सुनने वालों की लाइव कॉल्स होंगी, ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। नंबर आपकी याद आने के लिए एक बार फिर बताए देते हैं, 01274306677 ब्रेडफोर्ड एरिया कोड है, 01274306677। और आपको बताते चले कि अगर व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप शिरकत फरमाना चाहें तो आप शिरकत कर सकते हैं, 00447-800-599-563 00447-800-599-563। आपको वेलकम करके खुश आमदेद कह के हमें दिली खुशी होगी।

0: winner is...
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
7: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
7: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की खुआरी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
7: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hodson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबी कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे।
4: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

भरे जहां में कोई मेरा यार था ही नहीं, भरे जहां में कोई मेरा यार था ही नहीं, किसी नजर को मेरा इंतजार था ही नहीं। भरे जहां में कोई मेरा यार था ही नहीं, किसी नजर को मेरा इंतजार था ही नहीं। न ढूंढिए मेरी आंखों में रत जगूं की थकन, न ढूंढिए मेरी आंखों में रत जगूं की थकन, ये दिल किसी के लिए बेकरार था ही नहीं। न ढूंढिए मेरी आंखों में रत जगूं की थकन, ये दिल किसी के लिए बेकरार था ही नहीं। सुना रहा हूँ मोहब्बत की दास्तां उसको, सुना रहा हूँ मोहब्बत की दास्तां उसको, मेरी वफा पे जिसे एतबार था ही नहीं। सुना रहा हूँ मोहब्बत की दास्तां उसको, मेरी वफा पे जिसे एतबार था ही नहीं। और कतील कैसे हवाओं से मांगते खुशबू, कतील कैसे हवाओं से मांगते खुशबू, हमारी शाम में जिक्र बहार था ही नहीं। भरे जहां में कोई मेरा यार था ही नहीं, किसी नजर को मेरा इंतजार था ही नहीं।

0: और सामीना पे टेलीफोन लाइन पे मैनचेस्टर से जनाब रुखसार चौधरी साहब तशरीफ ला चुके हैं, खुश आमदेद कहते हैं जनाब रुखसार चौधरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम।
1: अल्हम्दुलिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चश्मे रोशन दिले मचा, बहुत आला बावकार और नहायत वाजिब एहतराम, वाजिब साहिब सदर ग्रामी कदर। और
0: रुखसार चौधरी साहब को अस्सलाम वालेकुम मोहतरम।
1: अल्हम्दुलिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चश्मे रोशन दिले मचा, बहुत आला बावकार और नहायत

0: बहुत मुबारक हो,
1: खैर मुबारक हो,
0: और आपकी पूरी फैमिली को, संगत साथ को, अहल-ए-याल को, और मौला अलैहि सलाम का वो कहते हैं कि मन कुन तो मौला हो फाजा अली उन मौला, जो सरकार का आज का दिन है वो आपको और साहिबान ईमान को बहुत बहुत अथाह दिल की गहराइयों से बहुत,
1: और आपको भी बहुत बहुत बहुत बहुत ईद गदीर की मुबारकबाद कबूल हो।
0: बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और मेरी तरफ से सैयद तुराब हैदर शाह साहब माशाल्लाह हमारे नन्हे हैं, मुझे अल्लाह ताला उनको सलामत,
1: उनकी सालगिरह थी अगले रोज और बड़े खुश थे और इंजॉय कर रहे थे और पूछ रहे थे कि मेरे लिए कोई सालगिरह का कोई गीत वीत होगा, तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं अगले प्रोग्राम में लेके चलूंगा आपको साथ, तो इंशाल्लाह वीकेंड आपकी उनसे मुलाकात जरूर होगी।
0: अच्छा उनकी बर्थडे कब है?
1: सेकंड को थी।
0: अच्छा
1: माशाल्लाह 9 साल के हो गए
0: जनाब, उनको था दिल की गहराइयों से बहुत बहुत जनाब मुबारक हो, और अल्लाह ताला उनको खिज्र उम्र अता फरमाए,
1: उम्र खिज्र, बहुत शुक्रिया, आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन, बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा।
0: बहुत शुक्रिया सर, और जनाब मोहतरम शकील साहब हैं, जंगीर साहब हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, महबूब अली साहब हैं, चौधरी फरियाद साहब हैं, राणा वजीर साहब हैं, और भी जो जो आपके माशाल्लाह इतने खूबसूरत रेडियो की नशरियात सुन रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से मोहब्बतों भरा, चाहतों भरा, उल्फत भरा, अकीदत भरा, उनसे भरा बहुत बहुत सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम, आपको भी सलाम कबूल।
0: तो मोहतरम मैं एक चंद लेने लेके आया हूँ।
1: जी जी इनायत कीजिए।
0: तो ये है तो गदीर के वाले से अगर जाल तो
1: जी, जी जी जी जरूर बिस्मिल्लाह।
0: तो कहते हैं कि पाक नबी ने फरमाया जिवे मैं वर्गा कोई होर नहीं।
1: आहा आहा क्या कहने,
0: मन कुन तो मौला याद रखना मेरे बाद करना मशहूर नहीं।
1: बहुत खूब बहुत खूब,
0: ये मेरा टल फैसला है, मेरे कर्म मेरे फिक्र करना गौर है, परची ते पीर अली दी मोर नहीं, हर सर नु उसने पार नहीं लगना, दामन ते पीर अली दी मोर नहीं।
1: आहा
0: सर बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह अल्लाह ताला खैर, आपको जजाए खैर ता फरमाए। तो एक और है
1: जी जी ना,
0: रुखसारे ममकरात का गयाजा गदीर है,
1: वाह वाह,
0: इंसानियत के जिस्म में ताजा गदीर है,
1: ताजा गदीर है, वाह वाह,
0: अरे जिन्होंने खाया था माले खतीजा का,
1: आहा,
0: इस शोक से उन सब की बेबसी का जनाजा गदीर है।
1: क्या कहने, शाने हैदर बेबाक के चंद अशारे इसी हवाले से कि कौले अहमद है कि है दीन का रहबर हैदर, कौले अहमद है कि है दीन का रहबर हैदर, जानशी मेरा वसी मेरा बरादर हैदर, कौल अहमद का है दीन का रहबर हैदर, जानशी मेरा वसी मेरा बरादर हैदर, हु बहु मेरी तरह आयनाए अकबर हैदर, हु बहु मेरी तरह आयनाए अकबर हैदर, शहर हूँ इल्म का मैं और ये है दर हैदर, और बाद मेरे यही अफजल है यही ओला है, बाद मेरे यही अफजल है यही ओला है, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है,
0: अली मौला है, क्या जनाब, बेशक बेशक, वो मुझे याद आ गया, वो कहते हैं कि कब समझे लोग हकीकत गदीर की,
1: वाह वाह,
0: इसके लिए तो चाहिए ताकत जमीर,
1: वाह वाह वाह वाह। अच्छा अब वक्त हुआ जाता है बिल्कुल ब्रेक का, आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर, दिल की अथाह गहराइयों से आपको ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा
0: जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह
1: हाफिज। और सामीन अब चलते हैं ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद होती है आप सुनने वालों से मुलाकात।
2: You're listening to Bradford Asian Radio
3: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर, होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले, बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से, बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड।

0: Bradford BD88JL Bukhari pasand aapki aur hamari Bukhari Dulhan wo jo piya man thai
1: Zevar wo jo Pakistan Jewelers se aaye
0: Nitnay design ke sath chudiyan kangan kante
1: baliyan anguthiyan aur haar
0: jo dulhan kare singhar
1: aaj hi mamu kaki ki dukaan
0: khalis sone ki pehchan
1: Pakistan Jewelers se shreef laiye
0: aur dulhan ke charche ghar ghar pahunchaiye
1: aapki shaan
0: hamari aan
1: quality ki pehchan
0: Pakistan Jewelers 1 Dufford Lane Bradford PD95BR 01274491442
1: Pakistan Jewelers अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
2: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
1: सोफी ज्वेलर्स
2: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
1: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
4: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio.
5: The Hindi Urdu Music Show on Bradford Asian Radio.

0: और सामीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को रंगे महफिल में खुश आमदीद। और अब हमारी दूर की कॉलर, जी हाँ, फ्रांस से हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं अहीर, जिन्हें हम आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके?
0: अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाइए, आप ठीक हैं, खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी, टिप टॉप मजे पे। आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक और आपके तमाम सुनने वालों को भी बहुत बहुत
0: जी जी मुबारक, बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। और हमने भी अच्छी इंजॉय की ईद, और उम्मीद करते हैं कि आपने भी खूब इंजॉय की होगी खाने वाने।
1: हाँ ना, आपको पता है हर घर में यही रौनकें होती हैं।
0: सही से सही है ना? ऐसी है, ऐसी
1: अच्छा
0: है।
1: मैंने बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा सुना था, मैं किसी की बर्थडे थी आप में से किसी की?
0: जी जी जी जी।
1: अच्छा अच्छा, तो सही सही, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी अगर इजाजत हो।
0: जरूर जरूर, इनायत कीजिए जी।
1: जी कहते हैं कि मुबारक आपको आपकी सालगिरह हो।
0: वाह क्या कहने,
1: मुबारक आपको आपकी सालगिरह हो, आने वाला हर साल खुशियों से भरा हो।
0: आमीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त।
1: आपके इर्द गिर्द बहारों का रक्स हो।
0: वाह,
1: आईना आपकी खूबसूरती का अक्स हो।
0: माशाल्लाह,
1: मंजिले खुद आपके कदमों में आए।
0: आहा,
1: आपको कभी कोई ना मुसीबत मिले।
0: क्या
1: के? मिले तो हर लम्हा अच्छी किस्मत मिले, सब लोग आपके गुण गाने लगे, आप घर सबके दिलों में बनाने लगे।
0: वाह वाह क्या कहने,
1: बुलंदी आपके कदम चूमे, मुसरतें आपके चार सू घूमे, आपकी पूरी हर कोई ख्वाहिश हो। मुबारक आपको आपकी सालगिरह हो, आने वाला हर साल खुशियों से भरा हो। आमीन आमीन।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरा छोटा बेटा है तो राव हैदर, तो वो उसकी सालगिरह थी, तो उस पे रुखसार चौधरी साहब मुबारकबाद दे रहे थे। वो याद है यहाँ प्रोग्राम में भी आया था, और उसकी सालगिरह थी, 9 साल का हो गया। माशाल्लाह
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह इनको कामयाबी की मंजिले ये चढ़ते जाए और आप लोगों का नाम रोशन करे, और अब आपके साथ साथ अपना नाम भी ये लाजमी रोशन करे। बुरे लोगों बुरी नजरों से अल्लाह पाक बचा के रहे।
0: आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और आज के इस प्रोग्राम में शायरी कुछ लाए हैं आप, या क्या होगा गाना?
1: मैं सुनाती हूँ। कहते हैं कि वो पानी की लहरों पे क्या लिख रहा था,
0: वो पानी की लहरों पे क्या लिख रहा था,
1: खुदा जाने घर पे दुआ लिख रहा था।
0: क्या कहने, मुझे कतील शिफाई का वो शेर याद आ जाता है जब भी पानी की बात होती है, कि ना कोई ख्वाब हमारे हैं ना ताबीरें हैं, ना कोई ख्वाब हमारे हैं ना ताबीरें हैं, हम तो पानी पे बनाई हुई तस्वीरें हैं।
1: तस्वीरें हैं बिल्कुल जी। तो फिर आगे कहते हैं कि मोहब्बत में नफरत मिली थी उसे भी,
0: मोहब्बत में नफरत मिली थी उसे,
1: नफरत मिली थी उसे भी, जो हर शख्स को बेवफा लिख रहा था।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: लिखा जिसने नावल वफा का अधूरा, लिखा जिसने नावल वफा का अधूरा, वही प्यार की इंतहा लिख रहा था।
0: क्या कहने क्या कहने,
1: भला करते करते गुजारी जिंदगी।
0: वाह वाह,
1: भला करते करते गुजारी जिंदगी, मगर मगर फिर भी खुद को बुरा लिख रहा था।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: जरा इसकी आंखों से आंसू ना निकले।
0: वाह वाह,
1: जरा इसकी आंखों से आंसू ना निकले, जिस वक्त वो लफ्ज़े सजा लिख रहा था।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: नमाज़े मोहब्बत में वो अपने, नमाज मोहब्बत में वो अपने, हुए थे जो सजदे कजा लिख रहा था।
0: बहुत
1: बका फना की, फना ही बका की राह बनी।
0: वाह,
1: बका फना की, फना ही बका की राह बनी, खजा से गुजरे तो हम बादे नो बहार हुए।
0: बहुत
1: शुक्रिया आपके बातों का, थैंक यू सो मच। आगे टाइम है तो एक और सुना दूं?
0: जी जी सुनाइए, वक्त है।
1: वो रास्ते जो भटक गए, वो रास्ते जो भटक गए, वो मंजिलें जो खो गई, अब इन पे है मिलाल क्यों, अब इन पे है मिलाल क्यों, ये दिल है अश्क बार क्यों।
0: अश्क बार क्यों, वाह वाह।
1: जो नहीं मिला वो मेरा ना था,
0: सही,
1: जो नहीं मिला वो मेरा ना था, जो मिला मुझे वो मेरा नहीं।
0: क्या कहने लाजवाब है।
1: जो पास है बहुत दूर है, जो पास है बहुत दूर है, जो दूर है वही पास है।
0: क्या कहने
1: पर दिल को अजब सी आस है, पर दिल को अजब सी आस है, पर मोहब्बत मुझे कब लास है।
0: मुझे इससे वो एतवार सादिक की गजल याद आ रही है ना, खूबसूरत है इसी हवाले से कि जिन्हें मानता ही नहीं है दिल, वही लोग हैं मेरे आसपास, मुझे हर तरह से जो रास्ते वही लोग मुझसे भी छड़ गए।
1: हाय हाय हाय, क्या बात है, बहुत ऊंची, बहुत खूब। तो कहते हैं कि सितम ये के खुद को भी खो दिया, सितम ये के खुद को भी खो दिया, और याद रहा तो फक्त वो हिज्र मेरा।
0: बहुत खूब।
1: हर सू था यही गुमान मुझे कि बस वही रास्ता था जो खो चुका।
0: बहुत खूब, बहुत
1: शुक्रिया जी।
0: जी जी, तो बस यही था आज के लिए। कुछ गीत गाना चाहें तो भी गा भी सकती हैं, अगर है कुछ गाना है तो गा लीजिए।
1: गीत थोड़ा सा मुझे टाइम दे, अगर है तो।
0: चलिए,
1: गुनगुनाती तो नहीं हूँ मैं इतना अच्छा, बट इतना क्या मुझे आता ही नहीं है।
0: देखते हैं आज कैसे आप करती हैं। जी जी,
1: देखती हूँ
0: जी जी,
1: देखती हूँ, रुक
0: जाइए।
1: तो आप हंसना नहीं, ठीक है?
0: ठीक है, मैं नहीं हंसता।
1: सुनाती हूँ। कहते हैं कि चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम,
0: बहुत खूब,
1: बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदलना

नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी।

0: बहुत खूब बहुत खूब। मैं जब भी ये गीत सुनता हूँ ना तो मुझे मोहसिन नकवी की वो नज़्म याद आ जाती है कि अगर तुम आईना देखो तो, अगर तुम आईना देखो तो अपने आप से नजरें चुरा लेना, अगर तुम आईना देखो, अगर तुम आईना देखो तो अपने आप से नजरें चुरा लेना, कि अक्सर बेवफा लोगों को जब वो आईना देखें तो आंखें चोर लगती हैं। आपके लिए बहुत सी तालियां, आपके लिए बहुत सी तालियां। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें।
1: अल्लाह हाफिज।
0: और जी हाँ सामीन, अभी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ थे हीर, फ्रांस से आप कॉल कर रही थी, बेहद शुक्रिया आपका। और सामीन हमारे पास यूँ कह लीजिए कि तकरीबन 18-20 मिनट रहते हैं, अगर तशरीफ लाना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं, 01274306677, 01274306677। बस अगर आप व्हाट्सएप के जरिए भी कॉल करना चाहें तो अभी कॉल कर सकते हैं, नंबर है 00447, जी हाँ 00447-800-599-563, 00447-800-599-563। आप शायरी सुना सकते हैं, कोई गीत गा सकते हैं, कोई अच्छी बात कर सकते हैं, और आज जिस हवाले से हम बात कर रहे थे अगर उस हवाले से भी बात करना चाहें तो ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। आज का उन्वान था मुलाकात, और मुलाकात के हवाले से कुछ बातें हमने भी आप के रूबरू पेश की कि मुलाकात जिस तरह दो तरह की होती है, कि एक सरसरी सरेरा और एक होती है जब आप किसी को दावत देते हैं, मदऊ करते हैं, लेकिन जो असल मुलाकात होती है वो सरसरी सरेरा वाली मुलाकात होती है, क्योंकि उसमें कोई तसन्नो कोई बनावट नहीं होती, आपको पता ही नहीं होता कि किस मोड़ पे कोई मिल जाए। और जो तयशुदा मुलाकात होती है जैसे ईद पे किसी को बुलाना या मिलना मिलाना, तो उसमें बहुत ज़्यादा तसन्नो होता है, बनावट होती है, रख रखाव होता है। तो आप बताइएगा कि आप कौन सी मुलाकात आपके नज़दीक ज़्यादा पुरखलूस होती है, ज़्यादा मानी खेज होती है, ज़्यादा हकीकी होती है।

वो सिलसिले वो शौक वो निस्बत नहीं रही, वो सिलसिले वो शौक वो निस्बत नहीं रही, अब जिंदगी में हिज्र की वहशत नहीं रही। वो सिलसिले वो शौक वो निस्बत नहीं रही, अब जिंदगी में हिज्र की वहशत नहीं रही। और फिर यूं हुआ कि कोई अपना नहीं रहा, फिर यूं हुआ कि कोई अपना नहीं रहा, फिर यूं हुआ कि दर्द में शिद्दत नहीं रही। टूटा है जब से उसकी मसीहाई का तलिस्म, दिल को किसी मसीहा की हाजत नहीं रही।

और समीन, एक शेर देखा, पसंद आया, जी चाह रहा है कि आपके साथ भी उसे शेयर किया जाए, आपको भी उसमें शरीक करें हम। कि ऐसी हालत में ईद आई है, ऐसी हालत में ईद आई है, पास हो तुम न वाईफाई है, क्या कहने। कि ऐसी हालत में ईद आई है, पास हो तुम न वाईफाई है। ऐसे भी होता है कि इंटरनेट के कनेक्शन जब कमज़ोर होते हैं तो ईद का मज़ा सारा ख़राब हो जाता है, जब आप किसी को ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे होते हैं। ऐसी हालत में ईद आई है, पास हो तुम न वाईफाई है। और सामीन, इसी के साथ ही आज का रंग महफिल पहुंचा अपने इख्तिताम पे। बेहद शुक्रिया आप सभी सुनने वालों का जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया, कॉल्स की, हमें मसरूफ़ रखा, रौनक लगाई, रौनक बढ़ाई। बेहद शुक्रिया आप सभी सुनने वालों का। और अब इसी के साथ ही आज के रंग महफिल से आप सभी सुनने वालों से हम चाहेंगे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब तो जाते हैं बुध कदे से मीर, अब तो जाते हैं बुध कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अल्लाह हाफिज़।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 14:13 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
7: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
7: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274 477 257 दुबई ज्वेलर्स
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
7: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कॉपी डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने?

0: प्यारा सा नगमा हमने खासकर मिस्टर मिसेस आसिम अली का आपकी नज़र किया है। 25वीं शादी की सालगिरह मुबारक हो। दुआ है हंसते मुस्कुराते रहें। बहुत शुक्रिया नवाजिश कि आप प्रोग्राम सुनते हैं, वो भी कभी कभी। अक्सर आप मीटिंग में मसरूफ होते हैं। प्यारा सा नगमा हम नजर करते हैं कायनात अली फरताश सरवर साहब हैं। उम्मीद है ये प्यारा सा नगमा आपको पसंद आएगा, तो आपकी नजर करते हैं तो लीजिए।
1: 24/7 द बेस्ट एशियन म्यूजिक ऑनलाइन मोहम्मद महमूद ऑन एशियन रेडियो लाइव।

0: You're listening to Mohammed Mahmoud on Asian Radio Live.
1: Jagjit Singh ki awaaz aap sun rahe hain Asian Radio Live se. Sabhi aapko ye batana hum bhool gaye, jaise ki pichle takriban last Saturday ko jo ghadiyan jo waqt hai wo change hua tha. यहाँ यूके में एक घंटा घड़ियाँ आगे हुई हैं और कुछ साथियों का कहना है कि आज हमने जल्दी प्रोग्राम शुरू किया है. नहीं, वक्त यूके का वही है, 9 बजे हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है. तो घड़ियाँ इस वक्त जो यूके का टाइम जो है 10:11 हुए हैं. जी हाँ, नोट कर लीजिए, 10:11 हुए हैं यूके टाइम. अभी आपके यहाँ क्या टाइम है, वक्त है, आप देख सकते हैं. इस वक्त यूके में 10:11 ये यूके का टाइम बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले लास्ट वीक से जो है घड़ियाँ आगे हुई हैं यूके में. अब जो दिन है लंबे हो गए हैं, रात बहुत छोटी. सनक में हम नजर करते हैं. बहुत शुक्रिया नवाजिश रूबीना जी, कैसी हैं आप, यादावरी का बहुत शुक्रिया. आपकी नजर प्यारा सनगमा, आप भी कभी कभी सुनती हैं प्रोग्राम जब वक्त मिले. मसरूफ जिंदगी में जब वक्त मिले या थोड़ा सा वक्त आप निकालती हैं प्रोग्राम के लिए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया नवाजिश. तो आज आपके लिए प्यारा सनगमा, तो लीजिए

0: तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
0: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम। लेडी स्टाफ
1: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
3: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
4: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
3: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
8: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.

उम्मीद करते हैं साथियों दोस्त इस नगमे को आपने पसंद किया होगा। वक्त जो है वो तेजी से जा रहा है। रिक्वेस्ट, बहुत शुक्रिया शाजिया अहमद, आप बाकायदगी से प्रोग्राम सुनते हैं और आज आप नगमा सुनना चाहते हैं प्यारी बहनों के लिए। आपकी तरफ से आसिया जी, शबाना जी, उम्मीद करते इस नगमे को आप पसंद फरमाएंगे। तो लीजिए, पसंद आपकी है और पेशकश हमेशा की तरह।

हमारे प्यारे अजीज मोहतरम काबिले एहतराम मोहम्मद आसिम अलैक को ये गजल बहुत पसंद है, उनकी फेवरेट, उनकी पसंदीदा। उन्होंने मीटिंग में जाना था, उन्होंने कहा लेकिन अब रुकना पड़ेगा इस गजल के लिए। बहुत शुक्रिया आसिम भाई, बहुत शुक्रिया खादम भाई, आपने लास्ट वीक को एक गाने की रिक्वेस्ट की थी, बहुत मुश्किल से मिला है नगमा आपका। खैर वक्त जो है वो भी तेज़ी से भाग रहा है, तो लीजिए आपकी नज़र प्यारा सा नगमा।

उम्मीद करते हैं दोस्तों और साथी उस नगमे को आपने पसंद किया होगा, प्यारा सा नगमा। हम नजर करते हैं राबिया मलिक, आपने अभी भी शिरकत की है और साथ साथ है मिसबाह हुमायूं मुगल। मेरे ख्याल में आपको भी मालूम नहीं है कि यूके में जो है घड़ियां जो हैं चेंज हुई हैं, लास्ट वीक को एक घंटा आगे, उसके मुताबिक आप प्रोग्राम में आपने शिरकत की है, आपने बहुत कुछ मिस कर दिया मिसबाह हुमायूं और राबिया जी। खैर ये प्यारा सा नगमा आपकी नज़र करते हैं और उम्मीद करते हैं नगमा आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो लीजिए मिसबाह जी और राबिया।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
11: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के

जगजीत सिंह की आवाज के बाद आइए सुनते हैं लता जी की स्वर में एक मधुर गीत, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। फिल्म का नाम है सरस।

0: with Guzzles Qawwalis. Classical music on Asian Radio Live. Every Saturday at 7 PM.
1: Dosto, ye surreela geet Taji ki awaaz mein abhi aapne Global Channel, International Channel, Asian Radio Live se suna. Guldaste ke roop mein jise pesh kar rahe hain aisa muqaddam. Humse raabta qaim karna ho, संपर्क स्थापित करना हो तो ईमेल कीजिएगा hisam@asianradiolive.com. अब हाजिर है आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे. रफी साहब, शकील का कलाम नौशाद की तर्ज पे फिल्म का नाम है.

चलिए अब सुनते हैं कुमार शानू, अलका याग्निक की आवाज, समीर के बोल और नदीम श्रवण का।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
11: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत्र रिज़वी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट।

0: are listening to Bradford Asian Radio and Asian Radio Live.
1: Ifat Hamid
2: on Bradford Asian Radio.
3: Jis din se mera dost shugufta nahi raha, us din se mera khud se bhi rishta nahi raha. Rehta tha uski yaad se sarshar har ghadi, ye dil kisi bhi taur shikasta nahi raha. वो पास था तो हर खुशी मेरे करीब थी, अब वो नहीं तो जीने का रास्ता नहीं रहा. जिसके लबों पे रक्स किया करती थी हंसी, दुनिया में अब वो चेहरा शिगुफ्ता नहीं रहा. पिन मोल मिला करता था पहले जो कभी दिल, अब हो गया है महंगा वो सस्ता नहीं रहा. धोखा ये सब निगाह का है मेरे दोस्तों, पहले की तरह वो कमर बस्ता नहीं रहा. जो हर जरा सी ठेस जो लगने से रो पड़े, सीने में अब वो दिल मेरा खस्ता नहीं रहा. सामने ने खूबसूरत अल्फाज के साथ आपकी खिदमत में आपकी मेज़बान इफ़त हमीद हाजिर है प्रोग्राम रंग तरंग लेकर. अस्सलामु अलैकुम. रंग तरंग प्रोग्राम आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो से सुन रहे हैं. सामिन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ, आपका खैर मकदम करती हूँ. सामिन, उम्मीद है कि आप सबका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा और यही दुआ है कि आने वाले दिन भी आप सबके लिए ढेरों खुशियां लेकर आएं और आप सब जहां रहें अल्लाह आपको बहुत खुश रखे. तो सामिन, आगाज़ करते हैं आज के रंग तरंग प्रोग्राम का नूर जहां की आवाज़ में फिल्म मस्ताना माही के इस नगमे से. सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगामन आ गया आप सबके नाम.

मलका इतरनम नूर झा की आवाज में सालगिरह फिल्म से ये नगमा आप सुन रहे थे। समय अगर अभी भी आपने शिरकत की है तो आप सबको रंग तरंग प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ, आपका खैर मकदम करती हूँ। समय हमारी जिंदगी अपने अंदर कौसो कजा की सी रंगीनी समोए हुए है। जिंदगी के साथ रंग हैं बिल्कुल कौसे कजा की मानित। दुख का रंग, खुशी का रंग, किसी को पा लेने का रंग, किसी से बिछड़ जाने का रंग, कामयाबी का रंग, नाकामी का रंग और मोहब्बत का रंग। कौसे कजा फलक पर उस वक्त नमुदार होती है जब बारिश ने धूप का हाथ थामा हो, और जिंदगी की कौसे कजा भी उस वक्त रूनुमा होती है जब जिंदगी के सातों रंग बयक वक्त मौजूद हों। ये शर्त अव्वल भी है और शर्त आखिर भी कि जिंदगी के जब तक सात रंग मौजूद हों तो तभी हमारी जिंदगी की कौसे कजा भी नमूदार होती है। बारह जिंदगी में हर तरह का रंग है और हर तरह के इन रंगों का हमें सामना करना पड़ता है जिंदगी में। सामने चलते हैं अगले नगमे की तरफ। फिल्म मेरे जीवन साथी से ये नगमा आशा भोसले की आवाज में। आओ ना गले लगाओ ना ओ जाने जा। आप खास तौर पर ये नगमा जो है ये सफीना आपके लिए मैं पेश कर रही हूँ। सफीना आपके भी प्रोग्राम को सुनने और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया।

प्रीति आशा भोसले फिल्म मेरे जीवन साथी में। समय कुछ बातें काबिले गौर हैं। कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, इसके बावजूद उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत होती हैं। कंजूस आदमी दौलत का मालिक नहीं होता, बल्कि दौलत उसकी मालिक होती है। ख्वाहिश अगर परिंदा होती तो हर शख्स अपनी जेब में रुमाल की जगह जाल रखता। अपनी खुशी मनाने से पहले दूसरों के गमों का ख्याल करो। समय जिंदगी वो मुंतजिर आंख है जो मौत का इंतजार करती है। ये तो थी कुछ काबिले गौर बातें आपके लिए। समय साथ मेरा निभाते रहेगा। आप सबको रंग तिरंग प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। ये प्रोग्राम ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो से आप सुन रहे हैं। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये जमीन, थम गया आसमां। तीसरी मंजिल फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये नगमा रजा।

ये थे मोहम्मद रफी फिल्म तीसरी मंजिल में। अब सामने कुछ और तंज़ो मिज़ाज़ की बात करते हैं। मुआशी तौर पर परेशान एक तंग दस्त शायर ने अपने दोस्तों को बताया कि रात मेरे घर में चोर घुस आए। अच्छा फिर क्या हुआ, एक दोस्त ने बड़ी हैरत से पूछा। कुछ भी नहीं, मैं दबका लेटा रहा, उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, फिर जाते हुए मेज पर 100 रुपये का एक नोट रख गए। बहुत खूब सा मैं, वाह भाई वाह। ऐसा भी होता है बाज़ात घरों में, चोर भी बेचारे पछताते होंगे कि कहां पर आ गए। बहरहाल सामिन, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। फिल्म ये जो नगमा है तीसरी मंजिल से, आप नहीं माफ़ी चाहती हूँ सामिन, ये तीसरी मंजिल का तो आपने नगमा सुन चुके हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ये नगमा ख़ास तौर पर मैं पेश कर रही हूँ फरजाना आपके लिए। प्रोग्राम को सुनने और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया।

जहां को सुन रहे थे आप फिल्म अफसाना जिंदगी का में। सामिन, अब दोस्ती के हवाले से बात करते हैं कि दोस्ती ये कोई मौसम नहीं जो अपनी मुद्दत पूरी करके गुजर जाए। दोस्ती को सावन का बादल भी नहीं जो टूट कर बरसे और थम जाए। ये आग नहीं जो सुलगे भड़के और बुझ जाए। दोस्ती आफताब नहीं जो सारे जहान को रोशन करे और डूब जाए। दोस्ती कोई कली नहीं जो खिलकर फूल बने और शाम होने पर मुरझा जाए। दोस्ती खुशबू नहीं जो फिजा में बिखर कर चंद लम्हों में ख़त्म हो जाए। दोस्ती प्यास नहीं जो सैराब होने पर बुझ जाए, बल्कि दोस्ती तो मिलाप है दो लोगों का, दो सांसों का, जो चले तो दिलों की धड़कन है और रुक जाए तो इस बिना जिंदगी कुछ भी नहीं। सामने अब चलते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते तेरे दिल में हो प्यार, जीना इसी का नाम है। ये खूबसूरत नगमा हम शादाब आपके लिए पेश कर रहे हैं। प्रोग्राम को सुनने और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया।

आपने मुकेश को सुना फिल्म अनाड़ी में। रंग तरंग प्रोग्राम ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो से आप सामिन सुन रहे हैं इफ़त हमीद के साथ। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ और आपका खैर मकदम करती हूँ। सामिन, कुछ लोग लाजवाल खुशबू की मानिंद होते हैं जिनकी यादें और सोचें हमारे वजूद को इस तरह महकाए रखती हैं कि वो हर लम्हा हमें अपने आसपास महसूस होते हैं। घरों की मानिंद होते हैं वो, चाहे हमसे कितने भी दूर क्यों ना हो, दिलो जान उनकी रूह में सिमट जाने के लिए बेकरार रहते हैं। सारी उम्र दोस्ती के नाम पर धोखा देने और पेशमान भी नहीं होते, जबकि धोखा खाने वाला तमाम उम्र उनकी वजह से परेशानी में मुब्तला रहता है। समय चलते हैं अगले नगमे की तरफ। अच्छी बातें प्यारी बातें जारी रहेंगी रंग तरंग प्रोग्राम में। दिल चुरा ले ओ चांद से चेहरे वाले, फिल्म दिल का रिश्ता से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में ये खूबसूरत नगमा हम पेश कर रहे हैं। अनीला

मोमिन अबिया अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म दिल का रिश्ता से ये नगमा सुन रहे थे। समय अब और कुछ सेहत के हवाले से बात करते हैं। अक्सर हमें पता नहीं चलता कि हम कौन सी सब्ज़ी बनाएं, लेकिन अगर सब्जियों की बात की जाए तो लौकी, जिसको हम कद्दू भी बोलते हैं, ऐसी बेशुमार फवायद रखने वाली सब्ज़ी है जो तिब्बी और गज़ाई फवायद से मालामाल है और हमारे रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है। इस तरह से सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए हमें बतौर ख़ास इसको खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। लौकी गोल या जो है ये ओवल शेप, बैजवी लंबी शक्ल में भी जो है ना ये मिलती हैं। सब्ज़ रंग के छिलके और अंदर से मुलायम इसकी सतह होती है और इसकी जो सब्ज़ी में ये मादनी नमकियात मसलन कैल्शियम, पोटाशियम और फलाद जैसे अज्जा इसमें होते हैं। लौकी बनाते वक्त पानी की मकदार अगर कम रखी जाए तो बेहतर है, क्योंकि इस सब्ज़ी का बड़ा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। जो लागिर और बीमार लोगों को लौकी का शोरबे वाला सालन दिया जाए तो उससे उनके जिस्म से जो पानी खारिज हो चुका होता है उससे पूरा हो जाता है और दिल की बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए भी लौकी का रस, सूप और शोरबा मुफीद करार दिया जाता है। हर सब्ज़ी की मानिंद लौकी में भी गज़ाई फाइबर्स मौजूद होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। अगर वज़न कम करना मकसूद हो तो लौकी का रस निकाल के पीना बहुत मुफीद है। डायबिटिक लोगों के लिए भी जिनको बार बार प्यास लगती है, लौकी प्यास बुझाने में उनकी मदद करती है। ये तो थी कुछ सब्ज़ी के हवाले से बातचीत। सामें साथ मेरा निभाते रहिएगा। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नज़र लौट के फिर आएगी। फिल्म मेरे सनम से ये नगमा आशा भोसले किया।

आशा भोसले की आवाज में ये नगमा सुन रहे थे, जिसको लिया था फिल्म मेरे सनम से। समय एक दौलतमंद आदमी मर गया। कफन दफन के बाद उसके रिश्तेदार घर में इकट्ठे हुए ताकि मरहूम की वसीयत वकील की जुबानी सुन ले। वसीयत खोली गई तो वो कुछ यूं थी: बीवी के लिए घर और बैंक का तमाम रुपया, अकलौते बेटे के लिए तीनों गाड़ियां और साले के लिए स्टोर में पड़ी गाजरें, क्योंकि मेरा साला कहा करता था दौलत से सेहत हजार दर्जा बेहतर है। लिखिए, अब उसने किस लिहाज से ये बात की होगी और समझने वाले क्या समझ गए। बहरहाल वैसे तो नुकसान ही हुआ एक तरह से देखा जाए उनको अच्छी नसीहत करने का। सामने चलते हैं अगले नगमे की तरफ। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, न घबराइए। आशा भोसले की आवाज़ में ये नगमा खास तौर पर आयशा आपने सुनने की फरमाइश की थी, तो लीजिए आयशा, आज आपके लिए ये नगमा हाजिर है।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Road, Bradford 7, 414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 012।
4: भारत को दूर करके स्याह हलकों से आसानी छुटकाया पा जा सकता है। लेकिन सामिन, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी आंखों के हलकों से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं। पहले ये नगमा सुनते हैं और उसके बाद मैं आपको कुछ ये बातें बताऊंगी। आप अगर ये चीज़ों से आप एलर्जी नहीं है तो आप इनको अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं आंखों के हलकों से निजात हासिल करने के लिए। चलते हैं अगले नगमे की तरफ। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, जानबाज फिल्म का ये नगमा हम कामरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। प्रोग्राम को सुनने और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया।

अभी आप ताल फिल्म से ये नगमा सुन रहे थे अलका याग्निक और सुखविंदर की आवाज में। समय अब चलते हैं खाने पकाने की तरफ। आज आपको मैं चिकन रेशमी मसाला बनाने की रेसिपी बताती हूँ। इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो है चिकन, तकरीबन 10 टुकड़े उसके करवा लें एक चिकन के, 1 किलो चिकन तकरीबन, कच्चा पपीता 1 खाने का चम्मच, दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 3 चाय के चम्मच, काजू 12 अदद, खुशखास 1 खाने का चम्मच, तली और पिसी हुई प्याज 3 खाने के चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 1 मुट्ठी भर, क्रीम 2 खाने के चम्मच। अब इसकी तरकीब है कि खुशखास, काजू, तली हुई प्याज और हरा धनिया जो है इसको आप ग्राइंड कर लें। अब इसमें इस पेस्ट में चिकन, कच्चा पपीता, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला डालकर 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर लें। फिर तेल गरम करके उसमें चिकन को मसाले के साथ हल्की आंच पर पकाएं, यहाँ तक कि वो तैयार हो जाए। अब उसे हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ी सी क्रीम के साथ गार्निश करके पेश करें। मज़ेदार आपका रेशमी मसाला चिकन तैयार है। ये तो थी सामिन आज की रेसिपी। साथ निभाते रहिएगा बॉम्बे फिल्म का ये नगमा, कहना ही क्या, और के एस चित्रा की आवाज़ में ये नगमा जो है ये रिजवाना आपके लिए मैं पेश

खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे समय। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप सब ने पसंद किया होगा और यही दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे सामईन, और ख्याल रखें कि इन हालात में अगर आप अपना ख्याल नहीं करेंगे तो कोई भी आपका ख्याल जो है वो नहीं रख पाएगा। सामईन कहते हैं कि एक आंसू ने डुबोया मुझको उनकी बज़्म में, बूंद भर पानी से सारी आबरू पानी हुई। सामईन इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रखिए। इजाज़त चाहती हूँ आइंदा आने वाले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
11: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड 3

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to...

0: Alright, check it out. Coca-Cola,
1: oh. Anyways,
0: Hazrat.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत
0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: चार है और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR 01274488877।
1: मीडियम वेव 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
3: 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत्र इज दी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर।

कहीं जवाब भी देने को जी नहीं करता, कहीं जवाब भी देने को जी नहीं करता, कहीं सलाम से पहले सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ ये नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ ये नशात आप डेब पे भी सुनते हैं। जी हाँ, डेब प्लस पे आप हमें BFD एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं, और फिर आप हमें डिजिटल क्वालिटी में डेब रेडियो पे भी सुन सकते हैं। और अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमारा स्मार्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो चाहे आप एंड्रॉयड, दोनों पे हमारे ऐप्स मौजूद हैं और आप जब चाहें हमें उन पे सुन सकते हैं। और साथियों, हमारी यही नशात आप इस वक्त सुन रहे हैं आपके अपने लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM के जरिए,

और सबिन, अब प्रोग्राम रंग महफिल लिए आपके मेज़बान सैयद हसन आदरे और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खालिस पारा आदाब पेश करते हैं, तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप सुनने वाले इस वक्त जहां कहीं भी हमारी ये आवाज़ सुन रहे होंगे, हमारी ये नशात सुन रहे होंगे, प्रोग्राम रंग महफिल सुन रहे होंगे, आप सभी अल्लाह के फजल करम से बाखैर वाफियत होंगे। और अगर खुदा न खास्ता आज तबीयत अच्छी नहीं है तो हमारी बहुत सी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको सेहत व सलामती दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और सामीन, आज के इस खूबसूरत दिन में, इस खूबसूरत शाम में आप सभी सुनने वालों को खुश आमदेद कहते हैं और आज की शाम आप सभी सुनने वालों के नाम। अगर आज के इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाना चाहें, कॉल करना चाहें तो आप सभी जानते हैं स्टूडियो का नंबर है 01274306677 ब्रेडफुट 01274306677। और अगर आप व्हाट्सएप के जरिए इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाना चाहें तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप है 00447800599563 00 तो हुआ यूके का इंटरनेशनल कोड 0044 और उसके बाद 7 यूके का मोबाइल का स्टार्ट होता है और उसके बाद 800 800 599 563 599 563। आप इस पे भी हमें अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं। और सुनाइए, आपका हफ्ता कैसा गुजरा, क्या कुछ किया आपने? यहाँ थोड़ा सा ही तो यहाँ यूके में मौसम होता है कि जो आप इंजॉय करते हैं, और वो भी अगर थोड़ी धूप वगैरह निकल आए तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मौसम तो बेतबारा होता है, इसका कोई एतबार नहीं। आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक खूबसूरत गीत से और फिर आपसे बातचीत जारी रहेगी।

सामीन, अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। आवाज थी अलका याग्निक और कुमार सानू की। और शुक्रिया अदा करते हैं, अभी बात हो रही थी वहीद मुराद साहब आपसे, बेहद शुक्रिया आपका। अगला गीत उम्मीद करूंगा कि आपको भी पसंद आएगा, और जितने भी इस वक्त हमारे ऑनलाइन सुनने वाले हैं उन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। आजकल जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि आजकल रेडियो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सुना जाता है, ऐप्स के जरिए सुना जाता है, वेबसाइट के जरिए सुना जाता है, और फिर गाड़ियों में सबसे ज़्यादा सुना जाता है। स्पेशली जितने भी हमारे इस वक्त टैक्सी ड्राइवर भाई हैं, भाई सुन रहे हैं हमें, सभी को आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में, इस सुहानी शाम में खुश आमदेद कहते हैं। और अगला गीत उन्हीं के नाम करते हैं जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं। और साथियों, अगर आप भी कोई गीत सुनना चाहें तो कॉल कर सकते हैं 01274306677 के जरिए।

और समीन, अभी आप नेहा काकड़ की आवाज में गीत सुन रहे थे, खूबसूरत गीत था। कहते ना कि राह वफा में तुम हमें किस्मत से मिल गए, राह वफा में तुम हमें किस्मत से मिल गए, हम खुश नसीब हैं, हमें किस्मत पे नाज है। खूबसूरत गीत था, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुनने वालों को पसंद आया होगा। शुक्रिया अदा करते हैं रुखसार चौधरी साहब आपका मैनचेस्टर से। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और जितनी इज्जतों से एहतराम से आप नवाजते हैं, अल्लाह पाक आपको भी उतनी इज्जतें दे। बहुत शुक्रिया। और अगला गीत आपकी पसंद, आपकी नज़र है।

0: Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274488777
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की खुआरी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
8: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
9: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
8: बस ट्रक फोकलिफ्ट
10: टैक्सी लाइसेंस
8: हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
9: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर
8: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
9: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679
8: UK
11: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
11: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
11: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
11: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
11: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
11: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स 12 फुट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स
12: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
13: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनिंगम स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
12: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मेनिंगम सुपर स्टोर मेनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD88AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश
13: मेनिंगम सुपर स्टोर
8: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
14: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
8: सोफी ज्वेलर्स
14: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
8: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
15: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी जा रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
15: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स टी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
16: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
17: You're listening to
18: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: مگر سامعین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی سننے والوں کو آج کریں گے محفل میں خوش آمدید. امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی سننے والے بخیر و عافیت ہوں گے. شکریہ ادا کرتے ہیں وسیم, بڑے دنوں بعد آپ نے ہمیں یاد کیا. بتا رہے تھے کچھ طبیعت اچھی نہیں تھی اس لیے آپ کال نہیں کر پائے, لیکن آپ ہمیشہ ہمیں سنتے ہیں جس کے لیے آپ کا بے حد شکریہ. اور اسی طرح ہمیں یاد کیا جناب شکیل صاحب آپ نے, اور حسب معمول آج بھی آپ ایک خوبصورت غزل سننا جا رہے ہیں کہ کشتی کو نا خدا کا سہارا ضرور ہے. اور اسی طرح ہمیں یاد کیا جناب شکیل صاحب آپ نے, اور حسب معمول آج بھی آپ ایک خوبصورت غزل سننا جا رہے ہیں کہ کشتی کو نا خدا کا

और इस अमीन अभी आप ये खूबसूरत गजल सुन रहे थे, आवाज थी मताली की और ये फरमाइश थी जनाब शकील साहब की, बदले से उन्होंने याद किया था और ये गजल सुनना चाहिए थी। और वसीम अब आ गई है आपकी बारी, आप हमेशा ही कुमार सानू की आवाज़ पसंद करते हैं, तो आइए एक खूबसूरत गजल, गजल नहीं बल्कि गीत आपके नाम करते हैं, कुमार सानू की आवाज़ है। सामने बैठ के जो दिल को चुराए कोई, सामने बैठ के जो दिल को चुराए कोई, ऐसी चोरी का पता खाक लगाए कोई।

और सामिन, अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि गीत वसीम आपको पसंद आया होगा, खूबसूरत गीत था। और अब एक और खूबसूरत गीत हमने क्यों कर रखा है, और गीत हम नाम करते हैं और रूज आपके। इस वक्त आप हमारी ये नशियात सुन रही हैं, ये गीत आपके नाम है।

जिस तरह हमने तुम्हें चाहा है कौन भला यूं चाहेगा, जिस तरह हमने तुम्हें चाहा है कौन भला यूं चाहेगा, माना और बहुत आएंगे तुमसे प्यार जताने लोग। सभी नबी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, उम्मीद करता हूँ कि गीत आपको पसंद आया होगा। और अब अगली ब्रेक नज़दीक है और इस प्रोग्राम का अगला दौरानिया शुरू होगा जिसमें आप सुनने वालों को मौका देंगे लाइव कॉल्स के लिए। ज़रूर तशरीफ लाइएगा क्योंकि ये प्रोग्राम आप ही का है, आप ही के लिए पेश किया जाता है और आपकी शिरकत ही इसे चार चांद लगाती है। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677 ब्रेडफुट 01274 एरिया कोड है 01274। स्टूडियो का नंबर है 3066703066677। व्हाट्सएप है 00447800599563। दस 00447800599563। आइए तो सुनते हैं इस घंटे का आखिरी गीत। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुनने वाले इस गीत को पसंद करेंगे, बहुत ही खूबसूरत गीत है। ये गीत मुझे बेहद पसंद है, उम्मीद करूँगा कि आपको भी पसंद आएगा।

0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो,
3: यू आर लिसनिंग टू
4: ब्रेडवुड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
5: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
4: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
6: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले,
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
6: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
7: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
6: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
7: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274 477 2577।
6: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
6: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 26007 8।
9: एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली।
6: बेगम जरा खाना बनाना, भूख लगी है।
10: मुझसे नहीं बनता, जाए बाहर से ले आए।
6: तो फिर मैं जाऊँ सेकंड वाइफ के पास।
10: मैंने टेकवे का कहा है, सेकंड वाइफ का नहीं।
6: अरे अब ब्रेडफोर्ड में सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट खुल गया है।
10: रियल इंडो चाइनीज फूड के स्पेशलिस्ट, जर्सी और स्पेशल अंगारा कढ़ाई, जिसने खाई उसी को पसंद आई।
6: और हाँ, सेकंड वाइफ के हाथों बने डिजर्ट जरूर चखिएगा।
10: सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट, 78 लिली क्रॉफ्ट रोड, BD9 5AB, फोन ब्रेडफोर्ड 2020।

0: जी हाँ समीन, और अब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं तो राब हैदर सैयद साहब, और ये शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं रुखसार चौधरी साहब का जिन्होंने इनकी आवाज़ सुनी और इनके पसंद को भी इन्होंने पसंद किया क्योंकि गुज़िश्ता प्रोग्राम आपने किया था जी। तो राब इस वक्त आप रेडियो पे ऑन द एयर हैं, तो आप शुक्रिया पहले अदा कीजिए रुखसार चौधरी साहब का।
1: हाँ रुखसार चौधरी साहब की बहुत बहुत अच्छे बंदे हैं, अच्छे हैं
0: जी जी।
1: रुखसार चौधरी साहब के लिए मैंने एक शेर प्रिपेयर किया था
0: जी जी जी।
1: किसी ने पूछा क्या है उदासी, मैंने कहा मोहब्बत का नतीजा है।
0: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और रुखसार चौधरी साहब ने भी आपका शुक्रिया अदा किया है। तो फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे बात होती है, ठीक है?
1: हाँ।
0: अल्लाह हाफिज।
1: ठीक है,
0: अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। जी सामिन, रुखसार चौधरी साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आपका शुक्रिया अदा कर दिया तो राब हैदर ने, और बहुत शुक्रिया आपका भी हम अदा करते हैं। और अब यूं है कि अगला गीत ब्रेक से पहले हम सुनते हैं और इसके बाद हम चलेंगे ब्रेक पे।

0: तो शर्म। और जी सामीन एक बार फिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं रुखसार चौधरी साहब, जो तो आप हैदर का शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: जी बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम, मेरे पीर और मुर्शिद, मेरे सरदार, मेरे राहबर, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत आवाज, यकीन करें कि दिलों को तस्कीन बख्शने वाली आवाज पीर सैयद तुराब हैदर शाह साहब की। अल्लाह ताला सैयद सलामत रखे आपको, अल्लाह ताला आपकी लंबी जिंदगी करे, और अल्लाह ताला आपको अपने वालिदैन का फरमा बरदार बनाए, अल्लाह ताला आपको नेक बनाए, और इंशाल्लाह आप स्टूडियो में आए, हम मुंतजिर है और बहुत हम मुश्ताक है आपकी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज और इतनी अच्छी शायरी सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया था दिल की गहराइयों
0: से। और एक शेर भी उसने सुनाया था आपको है।
1: जी मैंने सुना माशाल्लाह, उन्होंने मेरे मुझे स्पेशल डेडिकेट किया जिसके लिए मैं उनका बेहद मशकूर और ममनून हूँ, और मेरी बहुत सी नेक तमन्नाएं हैं उनके लिए।
0: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, बहुत शुक्रिया आपका,
1: थैंक यू मुर्शिद, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
0: जी सामीन अब इतना ही वक्त है कि अब अगली ब्रेक पे जाना है, गाना तो अधूरा ही रहेगा, तो यूं करेंगे कि ब्रेक के बाद इस गाने को हम दोबारा पेश करेंगे।

ने गाड़ देती है उसी तारीख रस्ते पर दिया जलता नहीं मिलता। और सामीन आप भी आज के इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677।

0: जी हाँ समीन, अब तालियों की भरपूर गूंज में बड़े अरसे बाद तशरीफ ला चुके हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जनाब नवीद राणा साहब स्वीडन से। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
0: जनाबे वाला खैरियत से आप ठीक हैं? इतनी मुद्दत हुई, कहाँ रहे?
1: बस यही है तो भाई, कहाँ जाना हमने।
0: वो कहते ना कि मिल ही जाएगा कहीं, दिल को यकीन रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है।
1: हम तो वो कहते हैं हम वहाँ हैं जहाँ से हमें आप अपनी
0: कुछ अपनी खबर नहीं आती। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। और सुनाइए, सेहत ठीक रही है, सब खैरियत रही?
1: जी अल्लाह का बड़ा करता
0: है, अल्लाह पाक सलामती दे।
1: गौर व फिक्र में वक्त गुजरते हैं कि आजकल का दौर जो है ना बड़ी अजीब सी हिम्मत में जा रहा है, कभी कभी ना बंदे को थोड़ा हैरानी भी होती है और परेशानी भी।
0: बेशक बेशक,
1: तो मैं कभी सोचा करता हूँ कि खैर बिखर, यानी एक तरह से बिखर गई है और शर मुनज़म होता जा रहा है।
0: बिल्कुल ऐसे ही हकीकत है, ये अटल हकीकत है बिल्कुल।
1: जो अल्लाह पाक भलाई रखे सबको,
0: आमीन।
1: और पंजाबी कहते हैं चंगिया ने मथे लावे।
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है।
1: और आप सुनाइए, मिजाज तबीयत कैसी आपकी?
0: अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मालिक का लाख लाख एहसान है, सब खैरियत सब ठीक ठाक। मिस कर रहे थे, मैंने कहा बहुत अरसा हुआ, एक दो हमारी तवील नशिस्तें हुई ऑन एयर कॉल्स में, लेकिन उसके बाद आप गायब हो गए।
1: और क्या था कि ठुकरा दिया था जब मुझे वो वक्त याद कर।
0: हाँ हाँ, ठुकरा दिया था जब मुझे वो वक्त याद कर,
1: इस वक्त मेरी जान जमीन पर नहीं था तू।
0: क्या कहने क्या कहने, कहते ना कि मैं कांटों पे भी चल के किस कदर गुस्ताख और सरकश हूँ, मैं कांटों पे भी चल के किस कदर गुस्ताख और सरकश हूँ, मेरे जेरे कदम जब कहकशां होगी तो क्या होगा।
1: वाह वाह वाह वाह जी, क्या बात है। और कुछ ये अच्छा, इसका अगला शेर कहते हैं कि ये मेरा जर्फ था कि तुझे साथ रख लिया।
0: हाँ हाँ,
1: ये मेरा जर्फ था कि तुझे मैंने साथ रख लिया, वरना किसी बिरंग में बेहतर नहीं था तू।
0: क्या कहने क्या कहने, ये तेरी कज अदाइयां कोई और सह के दिखा तो दे, ये तेरी कज अदाइयां कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो तेरा मेरा निभा है मेरे हौसले का कमाल है।
1: वाह वाह वाह, अब बात दोस्ती की नहीं हौसले की है, लाजिम नहीं कि तू
0: भी मेरा हम ख्याल हो। क्या कहने क्या कहने।
1: अगला शेर लिखते हैं इसमें कि छोड़े थे तेरी आस में जितने हसीन लोग।
0: हाँ हाँ, छोड़े थे तेरी आस में जितने हसीन लोग,
1: उनमें से एक के भी बराबर नहीं
0: आए। हाय हाय, कहते ना कि मुझसे बरतर है तो तस्लीम करूंगा दुश्मन, मुझसे बरतर है तो तस्लीम करूंगा दुश्मन, मेरे दुश्मन को मेरे सामने लाया जाए।
1: वाह वाह वाह वा। और रोकता है गमी इजहार से पिंदार मुझे।
0: आहा, बहुत खूब,
1: मेरे अश्कों से छुपा ले मेरे रुखसार मुझे।
0: बहुत खूब बहुत खूब। देख है दश्ते जुनू भेद न खुलने पाए,
1: ना खुलने पाए, ढूंढने आए हैं घर के दो दीवार मुझे।
0: तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं, वो क्या है अख्तर शुमार का, कि मैं तो इस वास्ते चुप हूँ, तमाशा ना बने। आए आए, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं।
1: और सीधिए होंठ उसी शख्स की मजबूरी ने।
0: हाँ, सीधिए होंठ उसी शख्स की मजबूरी ने,
1: जिसकी कुर्बत ने किया महरम इकरार मुझे।
0: आहा,
1: और मेरी आंखों की तरफ देख रहे हैं।
0: आहा,
1: मेरी आंखों की तरफ देख रहे हैं अंजुम, जैसे पहचान गई रूह शबे तहार मुझे।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: और क्या ही हासिल गजल शेर है आपकी नजर शाहजी
0: के,
1: जिनसे वीरानी सहरा मेरी दुकान में है।
0: हाँ हाँ, जिनसे वीरानी सहरा मेरी दुकान में है।
1: क्या खरीदेगा तेरे शहर का बाजार मुझे।
0: क्या कहने मुझे इससे वो खूबसूरत शेर याद आ रहा है कि गम की जागीर मुकद्दर में मिली है मुझको, गम की जागीर मुकद्दर में मिली है मुझको, अपनी जागीर में रहता हूँ नवाबों की तरह।
1: वाह वाह वाह, और जैसे गिल ने कई बार पुकारा लेकिन ले गई राह से जंजीर की झनकार
0: मुझे। बहुत खूब बहुत खूब।
1: और नाव के जुल्म उठा दुश्नाए अंदोज संभाल, लुत्फ के खंजरे बेनाम से बत मार।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: और सारी दुनिया में घनी रात का सन्नाटा था,
0: सारी दुनिया में घनी रात का सन्नाटा था,
1: सहने जिंदा में मिले सुबह के आसार मुझे।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: सहने जिंदा में मिले सुबह के आसार,
0: कहते ना कि ये चमन ही मुझको अजीज है, यहाँ रह तो लूंगा करार से। मैं पहला मिसरा भूल गया हूँ, मुझे ले चलो ना चमन में तुम, मैं डरा हुआ हूँ बाहर से, ये खिजा ही मुझको अजीज है, यहाँ रह तो लूंगा करार से, मुझे ले चलो ना चमन में तुम, मैं डरा हुआ हूँ बाहर से।
1: वाह वाह वाह, मैं डरा हुआ हूँ
0: बाहर से,
1: बाहर से ना जीने की सहूलत है ना मरने की इजाजत है,
0: वाह वाह,
1: फकत आसान है कहना मुझे तुमसे
0: मोहब्बत है, क्या कहने लाजवाब है, वाह
1: वाह, और मुझे उसकी उसे उसकी उसे उसकी जरूरत है,
0: हाँ हाँ,
1: सिवाय इस मुसीबत के ये दुनिया खूबसूरत।
0: क्या कहते हैं कि पेच दर पेच सिलसिले दिल के, पेच दर पेच सिलसिले दिल के, मुझे तुम्हारी तुझे किसी की तलब,
1: वाह वाह वाह, तुझे और की तमन्ना।

0: कहां से लाऊं।
1: क्या कहने, क्या कहने,
0: देखिए कहां से
1: कहां से काम पहुंच गए बातों ही बातों में।
0: और वो है कि किसी की चुप का मतलब ये नहीं, शिकवा नहीं उसको,
1: किसी की चुप का मतलब ये नहीं, शिकवा नहीं उसको,
0: खुला ऐलान है ये तो शिकायत ही शिकायत।
1: क्या कहने, जबरदस्त है, अच्छा है, वाह वाह।
0: चुप का मतलब शिकवा, खुला ऐलान है ये तो शिकायत ही शिकायत,
1: शिकायत ही शिकायत है, वाह।
0: मुकर जाना, बदल जाना, जफा करना, दगा देना।
1: क्या कहने, क्या कहने, खूबसूरत।
0: मुकर जाना, बदल जाना, जफा करना, दगा देना, ये सब कुछ आ गया तुझको तो फिर तेरी हुकूमत है।
1: क्या कहने, क्या कहने, फिर से पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा, वाह।
0: मुकर जाना, बदल जाना, जफा करना, दगा देना, ये सब कुछ आ गया तुझको तो फिर तेरी हुकूमत।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। साबर जफर का वो शेर भी इसी हवाले से है ना कि जो दिल में बस रहा है हुकूमत उसी की है, हम है सफर में और रिफाकत उसी की है, हम हैं सफर में और रिफाकत उसी की है, जो दिल में बस रहा है हुकूमत उसी की है,
0: हुकूमत उसी की। और क्या था ऐसा ही कुछ शेर
1: बोला कि मैंने ऐसे नहीं तेरी तरफदारी की, तू अलामत है मेरे अहद में खुददारी की,
0: खुददारी की, वाह वाह वाह। और वो था ना कि
1: जी जी
0: कुछ है, अजीब रंग से गुजरी है जिंदगी अपनी,
1: हाँ हाँ,
0: के दिलों पे राज किया और प्यार को तर।
1: हा हा हा, खूबसूरत है, खूबसूरत है।
0: क्या था कि इसका अगला शेर है जी गजल का, ये वाफ अबरक साहब, इनका नाम आफ्ताब अकबर है, तो ये बाक अबरक
1: जी जी गालबन ये फेसबुक पे ज्यादा होते हैं। अच्छा
0: जी, तो लिखते हैं कि गमे हस्ती, गमे बस्ती, गमे दौरा, गमे हिजरत।
1: हा हा,
0: गमे हस्ती, गमे बस्ती, गमे दौरा, गमे हिजरा, और इस पे भी धड़कना दिल का हमको इस पे हैरत है।
1: वाह हा हा, खूबसूरत है, वाह वाह वाह वाह।
0: और नाब सयाद है हायल, ना मेरी कैद है बस।
1: क्या कहें
0: जी,
1: जी, जी।
0: नाब सयाद है हायल, ना मेरी कैद है बाकी, तो फिर जिंदा पे क्यों कर, तो फिर कैसी हिरासत है।
1: बहुत खूब, बहुत
0: तो जिंदा, तो फिर जिंदा ये क्यों कर, तो फिर कैसी हिरासत है, और कुछ इतना डूब जाता है ये अबरक हर कहानी। कुछ इतना डूब जाता है ये अबरक हर कहानी में, हर एक किरदार की वहशत लगे अपनी ही वहशत।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: तो वो शेर फिर से आपकी नजर करता हूँ, शायद इसमें कोई जवाब भी हमारी गैर हाजिरी का, कि मुकर जाना, बदल जाना, जफा करना, दगा देना, ये सब कुछ आ गया तुझको तो फिर तेरी हुकूमत।
1: क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
0: शाहजी वक्त
1: तशरीफ लाया करें, हमारा ये प्रोग्राम हर जुमेरात को, बल्कि हर बुध को और आज सैटरडे को होता है, तो जरूर तशरीफ लाया करें, 9 से 10 लाइव कॉल्स होती हैं। जी जी
0: जी, इंशाल्लाह जैसे मौका मिले। मैं कह रहा था कि अभी कोई ब्रेक का वक्त है, कोई कॉलर है या कुछ आखिरी मिनट में
1: दो तीन मिनट और कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद आखिरी गीत होगा और फिर इसके बाद प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचेगा।
0: वो मेरे कुछ मेरे आपको सुनाने का मुझे वो हो रहा है कि एक ना जॉन एरिया साहब का अगर मेरे सामने आ जाए, बस दुआ की।
1: वैसे मेरे एक दोस्त है ना, तो वो अक्सर कहा करते हैं कि अगर आपको जॉन एरिया की शायरी पसंद है तो आप यकीन कर ले, समझ जाएंगे आप पूरे बर्बाद हो चुके।
0: अच्छा जो बात है ना, वो बस आपने क्या कहते हैं कि सुनते जाइए, क्योंकि हम उससे तबसरा करने लगे तो एक एक शेर
1: जी, बिल्कुल ऐसे ऐसे।
0: तो लिखते हैं कि हम तो जैसे वहां के थे ही नहीं,
1: आहा, हम तो जैसे के वहां के थे ही नहीं,
0: हम तो जैसे वहां के थे ही नहीं, बेअमां थे अमां के
1: थे ही नहीं। बहुत खूब,
0: हम के हैं तेरी दास्तां यसर,
1: आहा,
0: हम तेरी दास्तां के थे ही नहीं,
1: थे ही नहीं,
0: और उनको आंधी में ही बिखरना था,
1: उनको आंधी में ही बिखरना था,
0: बालों पर आशियां के
1: थे ही नहीं,
0: ओए हाय, अब हमारा मकान किसका है,
1: वाह वाह,
0: अब हमारा मकान किसका है, हम तो अपने मकान के
1: थे ही नहीं,
0: और हो तेरी खाके आस्था पे सलाम,
1: आहा,
0: हम तेरे आस्था के
1: थे ही नहीं,
0: और हमने रंजिश में ये नहीं सोचा,
1: हमने रंजिश में ये नहीं सोचा,
0: कुछ सुखन तो जुबान के
1: थे ही नहीं, क्या कहने,
0: और दिल ने डाला था दरमियान जिनको, शाहजी दिल ने डाला था दरमियान जिनको, लोग वो दरमियान
1: के थे ही नहीं, लाजवाब है, लाजवाब है, क्या कहने।
0: और आखिरी शेर लिखते हैं कि उस गली ने ये सुन के सब्र किया, उस गली ने
1: ये सुन के सब्र किया,
0: सब्र किया, जाने वाले यहाँ के
1: थे ही नहीं,
0: بے اماں تھے, اماں کے تھے ہی نہیں. شاہ جی بہت شکریہ وقت,
1: بہت بہت شکریہ, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور نیکسٹ پروگرام میں ضرور تشریف لائیے گا. آپ کو ایک خوبصورت شعر سنائیں گے جانے سے پہلے پہلے پہلے آپ کے لیے ہماری جانب سے بہت سی تالیاں. سلامت رہیں, اللہ حافظ. اللہ حافظ.

रहियां साहब अभी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ थे हमारे बहुत ही मोहतरम कॉलर जनाब नवीद राणा साहब स्वीडन से तशरीफ लाए थे, खूबसूरत अशआर सुनाए और उनके आखिरी शेर से एक शेर याद आया कि उसको रुख्सत तो किया था मुझे मालूम न था, उसको रुख्सत तो किया था मुझे मालूम न था, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला। उसको रुख्सत तो किया था मुझे मालूम न था, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला। बहुत ही अच्छे अशआर आज बड़े दिनों बाद नवीद भाई आपने सुनाए, बेहद शुक्रिया आपका। अगले प्रोग्राम में ज़रूर तशरीफ लाइएगा, नहीं तो आपकी गैरहाजिरी मार्क कर दी जाएगी, बता रहा हूँ। और सामीन अब दामने वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है।

0: और जी हाँ, जाते जाते अब उस्मान भाई भी तशरीफ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, हमारे पास सिर्फ एक मिनट है, दो मिनट
1: बस, और क्या कह सकता हूँ, बस मैं जरा मसरूफ था तो देर हो गई है।
0: मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है,
1: देर हो जाती है, बस क्या करें।
0: कोई एक आध शेर सुना दीजिए और फिर अगली महफिल तक उठाए रखते हैं सिलसिला, कुछ क्या सुनाएंगे?
1: चलो एक शेर है मेरे अपने पार्टनर के नाम है कि मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे।
0: बहुत
1: और हमारे एक उस्ताद थे इकोनॉमिक्स के कॉलेज में, तो वो एक हम एक शेर सुनाया करते थे, वो भी मुझे याद आ रहा है।
0: कौन सा?
1: के इनकी हसरत न करो, इनके पीछे न चलो, साए फिर साए है कुछ देर में ढल जाए।
0: क्या कहने, लाजवाब है, लाजवाब है। फिर ये शेर पढ़िएगा। अच्छा है,
1: इनकी हसरत न करो, इनके पीछे न चलो, साए फिर साए हैं कुछ देर में ढल जाएंगे।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लाजवाब है। और आपके लिए भी बहुत सी तालियां। अगले प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात
1: इंशाल्लाह, जरूर। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे,
0: अल्लाह हाफिज़। और जी हाँ समीन, अब इसी के साथ ही आज के रंगे महफिल से आप सभी सुनने वालों से इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत रौनक आप सभी सुनने वालों ने लगाई, बहुत अच्छा लगा। यकीनन अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहेंगे हम इस शेर के साथ के इजाज़त मिल गई है मांगते ही, इजाज़त मिल गई है मांगते ही, ठहरना अब मेरा बनता नहीं है। अल्लाह हाफिज़।

0: दूर वतन का एहसास,
1: आपके जज्बात का अक्कास,
0: सदाबहार नगमों की मिठास
1: जो है हर लम्हा आपके पास।
2: ब्रेडवुड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़। ब्रेडवुड एशियन रेडियो,
3: यू आर लिसनिंग टू ब्रेडवुड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।
4: The hope of the past, the need of the present and the demand from the future.
3: Medium Wave 1413 पर आप सुन रहे हैं Bradford Asian Radio.
5: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले,
6: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
6: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
6: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885 4283 49। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बोबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली।
5: बेगम जरा खाना बनाना, भूख लगी है।
6: मुझसे नहीं बनता, जाए बाहर से ले आए।
5: तो फिर मैं जाऊँ सेकंड वाइफ के पास।
6: मैंने टेकवे का कहा है, सेकंड वाइफ का नहीं।
5: अरे अब ब्रेडफोर्ड में सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट खुल गया है।
6: रियल इंडो चाइनीज फूड्स के स्पेशलिस्ट, जर्सी और स्पेशल अंगारा कढ़ाई, जिसने खाई उसी को पसंद आई।
5: और हाँ, सेकंड वाइफ की

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment?
4: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटली हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट की स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online.
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.